0: मेरा सच दुनिया का झूठ। दुनिया बहुत बुरी है और इसमें रहने वाले लोग उससे भी ज्यादा बुरे हैं।
1: दादी कब घर से निकल गई? पूरे इलाके में देख लिया, मोहल्ले वालों से पूछ लिया, कहीं नहीं है वो।
2: उसे चलता हुआ आ रहा होता है तो शक्ल देख के लगता है कोई यतीम आ रहा है, पास आ जाए तो मिस्कीन और फकीर भी लगने लगता है।
3: बैठे बिठाए करोड़ों की जायदाद का मालिक हो गया।
0: ये घर मेरा ख्वाब है, ये घर मेरी ताबीर है, ये घर मेरी मंजिल है।
1: मैं इस घर में किसी को शरीक नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ देकर तुम्हें फारिग करूं। ये घर अनस मेरे नाम कर दो।
4: बस तेरा साथ हो, देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
5: ओहो बुढ़े भएपछि भजन गाउला, भगवानमा मन लगाउला, राम कथा सुनाउला, शिव कथा सुनाउला, कृष्ण कथा सुनाउला भनेर हुन्न हे मेरा भक्तहरू। उमेर छँदा तागत छँदा नै भगवानको भजन गाउने गरौँ, आफ्ना सन्ततिहरूलाई पनि भजन गाउनलाई सिकाउँदै जाउँ। बुढाबुढी मात्रैले अब धर्म धानेर हुँदैन, अब आफ्ना सन्ततिलाई पनि धर्म धान्नको लागि सबैले प्रेरणा गरौँ। यहाँ राष्ट्रिय कलाकार हाम्रो गोविन्द गुन्जनजी हुनुहुन्छ, अत्यन्तै मिठो भजन गाउनुहुन्छ, यहाँ देवघाटमै बस्नुहुन्छ। यही नजिकका हाम्रा यस्ता कलाकारज्यूलाई पाउँदाखेरि हामी धन्य भएका छौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय हाम्रो तबला वादक एकदमै बुवा, यो उमेरमा पनि छमछमै नचाउनुहुन्छ, बुवाप्रति एकदमै विशेष बुबा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो सन्तोष भाइ एकदम, मनोज भाइ एकदमै प्रिय भाइ यहाँ अक्टोबरमा हुनुहुन्छ। यतिखेर हाम्रा परम पूजनीय, परम वन्दनीय, सबैका मनमुटुमा बस्न सफल, एकदमै हृदयस्पर्शी, कोमल कण्ठी कथावाचक हाम्रो बालकृष्ण अर्याल गुरुदेवको आगमन भएको छ। एकचोटि करकमलबाट गुरुदेवको लागि यहाँहरूले सम्मान गरिदिनु होला, गुरुदेवलाई स्टेजमै आउनको लागि ससम्मान आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि।

0: हरियो ओ
1: पार्क एवेन्यू ओ डी परफ्यूम मास्टर ब्लेंडेड बाय एक्सपर्ट्स Park Avenue Oud. Unleash your X Factor.

0: हरिओम ओम
1: जय जय श्री राधे। हरिओम
0: ओम हरिओम हरिओम ओम हरि ओम ओम, ओम, ओम, ओम, ओम, ओम, ओम, ओम, ओम, ओम।